बिल्कुल जनाब साचिकम निजमगढ़ इरकम पादर बि अब्दुल हसन अहलम इजाजत सिर्फ द्री कार्ज बाखलम टाइम था मैं कतल टाइम रासरा खात्मे दो के दीजिए विदात चीजी अखर बलड़शी हो मा त गड़े प गड़े मवाए चीज जमा बिल्कुल राशे जी द प्रोग्राम इसे जोड़े शे अखीरी कॉलर्स भाई

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस कर।

समझने वाले समझ जाते हैं। ढेर ज्यादा बनाने को शुक्रिया अदा करो टूली मीरावाल। मैसेज चिचा चाकड़ी आगबज शामिल हूं URD94 बदा बड़ुम्बी उली के सलाम बोली के स्पेस फोर के सलाम दुआ कलाम रासेन के पठ अठ अठ एक बानी प मोबाइल की उली के URD94 सलाम दुआ कलाम उली के और रासेन के प अठ अठ अठ एक बानी यानी कि अटस्सी का सी बानी रासेन के। वल जनाब नूर बताओ सर गप शप लगे उतार सुखा पके गए बा पड़ो में उदा से बू जो पके का अवल जनाब हड़ुम्बे मैसेज मुक्त चाकड़े हमेशा पशांत है आयसा खान इंतजार सवाबी सलाम इमशा भाई देर ज्यादा मनाना प्रोग्राम त दरात लू अभी तंद अम्मा तशीर ज्यादा मनाने को शुक्रिया आयसा मनाने को शुक्रिया अदा करू یو دنیا مننه یو جهان مننه او دا پیج بلګری پرېش کوچ نور سونه میسیجز راغلی ډیره زیاته مننه

लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं। अरे लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, मैं तेरे बाद किसी का रहा ही नहीं।

वो सब इल्जाम मेरे नाम करके वो सब इल्जाम मेरे नाम करके बिछड़ने का बहाना चाहते हैं। हासिल तो मुझे पहले भी नहीं था, हासिल तो मुझे पहले भी नहीं था, खोया मैंने तुझे आज भी नहीं।

0: मेरी भी इंतहा मोहब्बत की, अकेली वारिस तुम हो।
1: मेरी सांसें उखड़ने की शोरिश्ता,
0: माजरत हुआ हूँ ए दिल तुझे बेकदरों के हवाले कर बैठे। अरे कौन देगा सुकून आंखों को, अरे किस को देखूं कि नींद आ जाए।
1: बहुत खुश है तेरे बारे,
0: अरे वो मेरा सब कुछ है बस मुकद्दर नहीं, काश वो मेरा कुछ भी नहीं होता सिर्फ मुकद्दर होता।
2: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
3: बाबा मामू दा बोगा खुले दे बोगा नोटिस।